0: तीर चला के नैनन के बाण चलाकर बात अघम कह दीनी। ये लफ्ज अपने असल में अघम है गाफ और हे से। अक्सर आर्टिस्ट हजरात उसको अधम पढ़ते हैं, लोग भी अधम ही सुनते हैं। भाई जैसा सुनाओगे वैसा सुनोगे। तो वो है बात अघम जाने गहरी बात, भी का बात अघम की और कहन सुनन की ना है।
1: हजरत गुलाम भीख रहमतुल्लाह।

डेकोरेशन में एक सिंगार चूड़ियों का भी होता है। पहले 16 सिंगार होते थे, अब तो 16,000 सिंगार होते हैं, तो उसमें चूड़ियों का सिंगार बहुत जरूरी है।

हर मरे तो हम मरे, ये फलसफा है हयात मौत का। हर मरे तो अगर उसको मौत आ जाए तो बाकी सब फना। सबब हम सब इल्मे इलाही में हैं, हम सब इल्मे इलाही में हैं और इल्मे इलाही को मौत नहीं है। जिस तरह जाते इलाही को मौत नहीं है, इसलिए इल्मे इलाही को। हर मरे तो हम मरे और हम मरे तो

कबीर दास और इन जैसे दूसरे बुजुर्गों ने छोटी छोटी कुलियों में बंद कर दिया है। दरिया को कूजे में कहते हैं।

कबीर दास ने फरमाया उनके बेटे कमाल दास जिनके लिए कबीर दास फरमाते हैं कि आधे भगत कबीर हैं और पूरे भगत कमाल, वो क्या फरमाते हैं?